सतगुरु ने एकाग्रता आप जी नूं बड़ी मेहरबानी करके की है। हर काम एकाग्रता नाल संबंध रखता, हर गल एकाग्रता नाल संबंध कर रखता। जे एकाग्रता ना होवे तो कोई भी काम दुरुस्त नहीं होंदा, क्योंकि एकाग्रता भंग होवे तो मन आत्मा सब भंग हो जाते हैं। जिन्हें भी तुसी बैठे हो सतगुरु की गोद विच, सारे बड़ा प्यार आनंद माण रहे हो। यह है अखंड भोजन तिन कीर्तन चूरा। चूरमा है, चूरी है, सुक्का प्रशादा नहीं है, सुक्की रोटी नहीं है, वह भी है, उहदी अपनी थां है, मगर चूरमा गुरु साहब ने अखंड कीर्तन, कीर्तन जिहड़ा है वह चूरमा है। बाणी पढ़ी एक अलग गल है और बाणी नूं गा के कहना एक अलग गल है, दोनों वक्रियां वक्रियां स्टेजां ने। जिन्हां ने यह आनंद माणिया वो इस रस नूं जाणदे ने और इस पंगतियां नूं वह मन विच वसाण, तो फिर यह तो आनंद आवेगा। मैनूं हुक्म होया भी पहुंचना, जरूर आना। क्यों? मेरी टिकट तो एतवार की सी, एतवार आना सी क्योंकि सोमवार क्लास सी। पर गुरु साहब कहते हुक्म मनिया हो गए प्रवान, तो यह गल ठीक है, पर इस परिवार नाल मेरा एक बहुत गूढ़ा संबंध है जिसनों मैं इनकार नहीं कर सकता। कुछ भी हो गया, मेरे उस्ताद अलमस्त जी इस परिवार के नाल अलमस्त जी का लिंक जुड़ता है जाके, तो मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता। गगन ने फोन किया तो मैं क्या भी जरूर हाजिर होवांगा, शब्दों का आनंद माणिया, बहुत प्यार दिता। तुसी जितनी देर एकाग्रता विच आपां हैगे आ, थोड़ी जी एकाग्रता होर बख्शोगे, क्योंकि काफ़ी दिनों तो तबीयत गला कुछ इदा दी है, कुछ सेहत ठीक भी नहीं हैगी, पर ठीक हो जानी है मैनूं पता। वो क्यों कि जब हुंगारा अच्छा आने लग जाए ना, तो फिर गल करन दा स्वाद और गल करन दा टेस्ट बन जाता। सो आओ प्यार नाल राग चुनिया इन्होंने जैत श्री, गुरु ग्रंथ साहब का राग है, बहुत सुगड़ बाणी है। ये आता देहो संदेसरो कहियो प्रे कहियो बिखम पई, मैं गोविंद सुनते कहो सुहागन सहीयो, को कह तो सब बार बार, को कह तो सब भइयो। इसे सुन यार हमारे।

जैत श्री कौर दे पहले जन्मदिन की खुशी विच कीर्तन समागम कराए गए हन। अते संगीत सिंह दे इलावा मलार सिंह नू अपने मां बाप दे आग्याकार गुरसिखी जीवन चरणा दा प्यार गुरसिखी जीवन बशिश करना तेरे चरणा नाल बणना वे सुवासा केसा नाल सिखी प्रेमा भगती बख्शिश करनी कमाइया विच बरकता पौनिया जी संगत वालों आप दियां बख्शिया हुई दातां विचों पंचम इकड़ा प्रसाद दे देगा हाजर है दर परवान होवे परवानिया प्रसाद

0: निमुखन बिसरौ तुम कौ हर हर सदा पजू जगदीश सतगुरु तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी पूजन कीर्तन नीत सतनाम श्री वाहिगुरु जी सूरठ महला पंजवा कर तीजा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाती सब उतरी पाप कमाती निर्मल हुई करे शनाना गुरपूरै कीने दाना रामदास सरोवर नाती सब उतरी पाप कमाती निर्मल हुई करे शनाना गुरपूरै कीने दाना सब कुसुर खेम प्रभ धारी सही सलामत सब थूक उबारी गुर का शब्द विचारी रहाऊ साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयु साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयु साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जत श्री कौर वालों सारे संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी सारे आए साढ़े जातसी के पहले जन्मदिन से पहले जातसी राग दरबार से सारे दूरों नेरों सब तो छोटे बच्चों का जत्था तो लैके प्रोफेसर दलबीर सिंह ते उस्ताद जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी
2: पूरे परिवार का ते पूरे परिवार वालों भी हार्दिक धन्यवाद सानू इस राग दरबार से वखरे शब्दों का रिफ्लैक्शन का वेला मिलिया ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਤਰੀ ਕੌਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪ ਸਭ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
1: आप जी लंगर ते प्रिंसेस केक प्लीज छाट के जाना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की
0: वाहेगुरु जी की फतेह

परम सम्मान योग चुक चुक अटल चवर शतर तख्त दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ आप सारे ही विड़पागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो साम दे दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है ओ विचार आपा सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जिस शब्द दी आपा विचार कर रहे हां ये पावन शब्द

شديدة. काम क्रोध मन दे नन्ने नू सियारी है, मन विच किथे ने, मन विच ने अंदर अंदर ही रहंदे ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकार आसा मनसा तृष्णा ये सारे अंदर ही रहंदे ने। किथे रहंदे ने? सतगुरु जी कहंदे ने, कहन लगे काम क्रोध मन मोह शरीरा, मन विच रहिंदे ने, इस तन विच रहिंदे ने, शरीर विच। लब लोभ अहंकार सो पीरा, लब दा भाव हुंदा है जीव दे चस्के, स्वादले भोजना दे चस्के। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने तिलंग राग विच भी यह शब्द वरतिया, उथे भी यह गल समझाई है कि प्यारे हो जिहड़ा मनुख इन्ना दे अधीन रहिंदा है उसनू परमात्मा दा सुख नहीं मिलदा। यह तन माया पाहया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए, लब शब्द वरतिया। मेरा कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सिजै जाए।

आओ भुला गलती की मुआफी साध संग। वो जिहड़ा हरि परमात्मा है वह हर एक जगह ते व्यापक मान है। भगत नामदेव जी कहिंदे फिर इसे दी अगे रचना इसे दा विस्थार गुरु नानक पातशाह महाराज ने किया। आपे रसिया आप रस पंचम पातशाह महाराज कलगीधर पातशाह महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज भाई साहब भाई नंद लाल जी ने सारिया का ख्याल एक ही है। कहिंदे परमात्मा हर एक थान पर है ता ही पातशाह ने सानू बाणी च लिख के दिता है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई। जे हर एक जगह ते हरि परमात्मा है ता ही बाणी अंदर लिख के दिता है ना जी। पर एक जगह ते परमात्मा नहीं है जां कह लिए छुपया होया। फिर जे एक जगह ते गुरु परमात्मा नहीं है फिर मन दे अंदर सवाल खड़ा हो गया शंका पैदा हो गया फिर वह परमात्मा करण कारण समर्थ कहदा होया। जे एक जगह ते नहीं है नहीं हरि परमात्मा करण कारण समर्थ है पर एक जगह ते नहीं है वह भी सच है। वह फिर किहड़ी थां है? वह है बंदे दी सुरत साडी याद साडा चेता। असीं दातां लै के गुरु नूं भुल जांदे आ। इत्थे गैर हाजिर है परमात्मा इत्थे एबसेंट है इत्थे नहीं है परमात्मा। यह चेते नहीं करते असीं इस तरह ही है ना सच्ची गल है ना। इत्थे नहीं है बाकी सारिया थावां ते हाजिर है। अरदास करिया करो हे परमात्मा साडे जहन दे अंदर भी तेरी याद वस जाए। इत्थे इत्थे तेरी याद वस जाए तेरा नाम सिमर सिमर के तेरा नाम जप जप के तेनू याद कर करके ये जिहड़ा जीवन मिले है इहनू असीं सफल कर जाइए। आओ भुला गलती दी मुआफी आनंद साहिब दा जाप सारे मिलके पढ़िए।

निर्मल पूरन पुरख विदाता रहाओ। नानक प्रभ विनासी ताकि सेव न बिरथी जासी, अनद करह तेरे दासा जप पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई चौ गिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा बेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औख दिया एका लिव लाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तूण है छुट है निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चितव चितवनी, उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो, हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीरत आखिए, करते का होई बिचारो, तित कर गाओ सोहेला सिवरियो सृजनहारो। तुम गाहो मेरे निर्भव का सोहेला, हवारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े समालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल, देहो सज्जन सिसड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक सह देह आवन। राग आसा महला पहला छह कर छह गुर छह उपदेश, गुर गुर एको वे सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वड़ाई तोए रहाओ। विश्वे चसिया कड़िया पैरा, थिति वारी महो होवा सूरज को रुतनेक। नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला। गगन मैं थाल रव चंदीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलियान लो पौन चौरो करे, सगल बंदराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खन्ना तेरी आरती, अनता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंधे चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अंदिनो मोहे आही पियासा। कृपा जल दे नानक सारंको होए, जाते तेरे नाय वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, कर डंडोत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साध न जानिया, तिन अंतरा मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चला है चुभ है दुख पाव है, जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पूरक पाया परमेश्वर, भव सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो विनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला। औद घटे दिन सरैनारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे मह, तरेहो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पियावे एहो रस, अगत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहा जो, हर गुरते मन है बसेरा। निज कर महल पाओ सुख सहजे,

वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिस जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करना उन्हें दया वेताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी आप जिया ने कृपा रहमत की है अमृत वेले तो सोहने तख्तों के प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे हैं आप जिया का कोटान कोट धनवाद शुकराना है इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्णता उपरंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुखासन की सेवा हुई है सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना सच्चे पातशाह जी कृपा करो आप जी अपनी सेजा ते विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आमदा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह बोले सो निहाल

मन पितर मांगन को हर दान रहाओ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखो मां।

नाथा की नाथ रहाओ सुत संपत भिख्या रस भगवत नेह निबत जम कै पाथ नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात शरण समर्थ अकथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन धूर जन बांचत मिले लिखत तुरमाथ केदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद बिसरत नाही मन ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल पही आन बिखे जरीरा।

गर्व कुंड कुंट में जिने धारियो ने बिकै बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक आन ही निहोर केदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रहन पे कल मलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह तुरंत आसा

भेद पौ कब न सूढ़ से आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पाव सडू मुए बिन पानी धंधा करत सगली पत कोस भ्रमण मिटस गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन सो मन मान्या मन ही ते मन मुआ अंतर बारे को जान्या नानक अवर न दुआ पैरु महला पहला गगन हूं पुनता पूजा दे दुखी नित दुख सहे राम नाम बिन मुदन पावसु मुक्त नाम गुरमुख लहै राम नाम बिन बिरथे जग जन्म बेखा वै बेख बोली बोले बिन नावे ने फल मर पर मना रहा पुस्तक पाठ ब्या करनु बखाने संध्या कर्म ते काल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे डंडक मंडल सिखा सुतोती तीर्थ गवन अत भ्रमण करे राम नाम बिन सांतन आवे जप हर हर नाम सुपार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई बस्तर सूड़ तन निगण पया राम नाम बिन तृप्तन आवे किरत के बांधे भेख पया जेते जी जंत जल थल मैयल जत्र कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चूल पिया राग पैरो महला तीजा चौक दिखा पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्बना कर है कोई ब्रह्म बिंदे सु ब्राह्मण हुई जात का गर्बना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ ते चले बहुत विकार राव चारे वर्णा के सब कोई ब्रह्म बिंते सब उपत हुई माटी एक सगल संसारा बहुविध पांडे कड़ी कुमारा पंच तत् मिल दे का आकारा कट वद को करे बिचारा कहो नानक ए जीव करुं बंद होई बिन सतगुर पेटी मुगतना होई पैरो माला तीज जोगी ग्रही पंडित पेक तारी सुते अपने अंकारी माया मद माता रहे सोए जाग तरे नमु सह कोई राम सो जागे जे सतगुर मिले पंच दूत ओ वसकत करे सो जागे जो तत् बिचारे आप मरे अवरा न मारे सो जागे जो एको जाने पर किरत सोडे तत् बसाने चौवर नवे जागे कोई जमे काले ते सूटे सोए कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री ओए भैरो महला तीजा जाको राखे अपनी सरनाई सचे साचे लागे साचा फल पाई रे जन कैसे करे उपकारा हुक्मे उवा हुक्मे विरतारा राव ए आकार तेरा है तारा किण मैं बिन से करतन लागे बार कर प्रसादे खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया कहत नानक कुमार जवाल सोई ऐसा बूझे परमन पुलै कोई पैरो महला तीजा मैं कामन मेरा कंत करतार जिहा कराए तिहा करी सिंगार जहां ते भावे ता पू करे तन मन साचे साहिब जो जहां ते भावे ता पू करे तन मन साचे साहिब जोग राव उस तत निंदा करे क्या कोई जा आपे वरते वरता एको सोई गुर प्रसाद दी परम कसाई मिलोगे दयाल पंच सौद बजाई भनत नानक करे क्या कोई जिसनु आम लावै सोई पैरो महला तीजा सो मुण जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो पाई मन को नाम नौ निध पाई राव मूल मोह कर करते जग तो पाया ममता लाई भरम पलाया इस मन ते सा पिंड पराना मन कै विचार हुक्म बूझ समान कर्म होवे गुर कृपा कर ए मन जागे इस मन की सदुबदा मरे मन का सुभाव सदा बैरागी सा मैं वसे तीत नरागी कहत नानक जो जाने प्यो आदि पुरख नारंजन देव भैरो महला तीजा राम नाम जगत निस्तारा पव जल पार उतारन हार गुर प्रसादी अर नाम संभाल सद ही नवह तेरे नाल राव नाम न चेते मन मुगवारा बिन नावे कैस पावे पारा आपे दाद करी दार देवन हारे कवे

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

बस करे सब बल सदा सुख मन बसे दुख संसारे खोवे गुर नौनद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए

जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो वह उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे सांग साय सुहावन चीत जो बैराई तसु प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर वसे अंध खेल माया रंग रसे दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत काल नावे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालो त्रो याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी राज तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सूख नेरे कोय न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्रोक देनहार पर छोड़ कै

जैसे सूर सब को सोग ब्रह्म ज्ञानी कह दिष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजे एक ज्यों सदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नान ज्यो पाव का सह सुहाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैन लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होय प्रगास जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाय मान ब्रह्म ज्ञानी ऊचे ऊंचा मन अपने सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य

ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा। ब्रह्म ज्ञानी पर पुकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुबल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नान ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम उधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुद त्यागत।

ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माए, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी,

उस पंडित कहे उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय वसावे सो पंडित फिर जो न आवे। वेद प्राण सिमरत पूजे मूल सुख में जाने अस्थूल चौं वरना को दे उपदेश। नानक उस पंडित को सदा देस। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए। सात संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उधारे। बस प्रेत मुक्त पात्र को तारे। सर्व रोग का उक्त नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुत किते ना पाइये। धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार मम का निवास। तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दिसंदन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास नर गए प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्मे तावे। जीवन मुख सो कहावे तैसा अर्घ तैसा सो सदा आनंद ते नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अभमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानक को पर किए। जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जिस जिद घर राखे तैसा तन नाओ। आपे करन करावन जोग प्रभावे सोई फन होग। पसरियो आप होए अनंत तरंग लखे ना जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसी मद्दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नान।

जो किश किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबों के संग मुझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरे नाम से आवे न जाए नान सदी रह समाए आप उपदेश समझे आप या पेर चया सबके साथ।

जब पूर्ण करता प्र सोए तब जंकी त्रास कोक सोए जब अवगत गुचर प्रवेका तब चित्रगुप्त के पूछ लेखा जब नाथ निरंजन गुचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही चर्चा नानक अपन रूप आप ही पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता दैवन मैल को कह धोता जय नंजन का निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल शिथिल लग को की जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे तय किसे भूकम तृप्तावे कर्ण करावन करने हार नानक कर देगा ना समार जब अपनी शोभा अपन संग मनाए तब कमन माए भाव मित्र सुध भाए।

Rabbanim. आपे कौतक करे नंचो जापे रसपो गंजो जिस पावे तिसे अपन नाय लावे जिस पावे तिसे खेल खिलावे बेसमार बेअन बेसमार अथा अगंत तोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक

श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा दे संत पेटिया नानक मन प्रगास अशपदी संत संग अंतर प्रापटी ठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सकट माए अनक रंग नान अधिष्ठाए नौन दे अमृत प्रभु का नाम देही में इसका अवसराम सुन समाध अनंत नाद कह न जाए अचरज समाध तिन देखे आज साहब दिखाए नान ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार आनंद घट घट व्यापरिया भगवंत धरन माया आकाश प्याल सर्व लोग पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आग्या तैसा कर्म पौन पानी बे संतर माए चार कुंड दह तिस समाए तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नान सुख पाओ वेद प्राण सिमरत में देख ससे सुन खत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप ढोल न कबून डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाई है गुणे मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत हार्यो स्वामी ओत बोध गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में उपसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग रचन जन जाता तिसकी ऐ रह सत वचन साधु सब कहत जो जो ऐ सो इस कुमाने कर्ण करावन हार प्रवजाने अंतर बसे बार भी ओही नान दर्शन देख सब मोहे आप सद किया सब सत्य तिस प्रभु सगली उत्पत तिस भावे तां करे विस्तार तिस भावे तां एकंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावे तिस लय मिलाए कौन निकट कौन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नान तिजन आप बुझाए सर्व भूत आवरतारा सर्व नैन आप विखनारा सर्व समगरी जाका तना आपन जसा भी सुना आपन जान खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद लिप्तो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे

तीर्थ नामा जित पावा विण पाने के नाई करी जित सिरठ उपाय वेखा विण कर्मा के मिला लई।

असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरमो पाख सार असंग मोल लाए तार

स्वासारणी बरमाओ सत सुहाण सदा मनचाओ कवण सुवेला भगत कवण कवण थित कवण वार।

आपे जाने आपे दे आख है सेपे के ही के जिसनों बक्से सिफत सला नानक पातशाही पातशाह।

आखे बोल बिगाड़ तां लिखे सिर गावारा गावार सो डर के हा सो कर के हा जित वै सर्व संभाले।

रचाई। रंगे रंगे पाते कर कर जिन से माया जिन उपाई, कर कर वेख्या की ताया प्रणायन जिवते दी वडियाई। जो तिथ पावै सोई करसी हुकम न करना जाई, सो पातशाह साहब साहिब नानक रहन रजाई।

भगत ज्ञान दया भंडारण कड़कट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिस दे अवरा साध।

ताकि अगला कतिया न जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिदा की सुध।

चक्र बकर फिरे चतर चक मानी प्रतीन लोक चौदह के विखे जग जापी जय जाप देवनाथ मूर्था प्यो सबे जथाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सरचियो सुंभ कण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस।

पवित्र परे हैं पवित्र प्रति से आदि से आदिर से आकिर से भक्ति शांत प्रसाद कथते के शिज देसे के पिज पेसे के गंज करमे के पंज परमे के पिज लोके के दत सोके के विदूत बरने के विभूत करने के राजम प्रभाए के धर्म तुझाए

सर्वयुक्ता सर्वमुक्ता रसावशन्द्वय प्रसादमु नर्कनाशे देम प्रगासे नंगं स्रूपे पंगं पूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अलंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्रे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकंसरीक मितो अमीक सदैव प्रवाह जय है जाहे भक्ति छन्द्वय प्रसाद के जहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमे सुसलाम है समस्त कलाम है के साहेब दिमाग है के हुसन चराग है के कामल करीम है के रोजी के राज करहीम है के रोजी दहन है के राज करहन है करीम कमाल है के

नानक सुंदर। हिंसद हे है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत कौन गने, नहीं जात विचारे, श्रीपद श्री भगवान पजे बने अंत।

हरे मन में कर पर्वत पंक, हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते तंगन मान मलेंगे श्रीपद से पवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर पार बंडे पर यार विचारे सार की तार बछैया तोर तदेश मलंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े ग्राण के दोन हार सुबत्तन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन सचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के वह पुंज खपेंगे साध सू प्रसन्न फिरे जग सदर सवे अवलोक चपेंगे। मानवेंद्र गजेंद्र नराथ जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवेवाच बेनती चौपे अमरी करो हादे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चन मारे हमारा अपना जान क्रोध पारा हमरे दुस्सवे दूंगा वो आप दे मोह बचावो सुगे से मोर परवारा से उसे सबे करतारा मोर छान कर दे करिये सब बैरन को संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा दूर बहन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याहूं जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊं से सिख हमारे तारिये चुन चुन सदर हमारे मारिये आभा दै मुझे वरिये मन काल का त्रास नवरिये हुजो सदा हमारे पच्छा श्रिय तुझो करे और अच्छा राख लियो मोए रखना रे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद के अंता तुम हो पुरीश दर्द स्कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब की हो वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो जमन काल सब लोक सुबारा नमस्कार है ताहे मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जने आप सुहारी सिवकुन को सब गुण सुख दियो शतरन को बल मोहद कियो कट कट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत चीटे दे कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशकर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट गए पट पट की जाने

एक पर्सन आया, लाभ लोभ अहंकार चुका, सतगुरु भला पाया, कहे नान जिसनु आप तुठा तेने अमृत गुरते पाया, भगतां की चाल नाली चाल लाल नाली, भगतां केरी बिखम मार चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही, बोलना खन्यो तिखी वालो ने की एत मार्ग जाना, गुरु प्रसादी जिनी आप तजार वास ना समाणी, कहे नान चाल भगतां जुगो जुग नाली, ज्यों तू चलाए ते चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जेब तू चलाए तिवे चले जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन्ना लाए, से हर हर सदा तिहावे, जिसनु कदा सुनाए अपने।

चुका है, हर रूप नजरी आया। गुर प्रसादे पूजिया जा वेखा हर एक कह, हर बिन अवन कोई कहे, नानके नितरंद से सतगुर मिलिए दिव दृष्ट होई। ए सरवणो मेरे ओ साचे सुनने नू बठाए, साचे सुनने नू बठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी, जिस निमंत्रण हरिया हो रसना रस माणी, साचे लख बटाणी ताकि गद कही न जाए,

भी महल्ले पहले के लिखे टुंडे अस राज की तुनि श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की करत न लागी वार।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साधु संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साधु संगत जीओ आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके सिखां दा गुरुआं दा इतिहास सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। अज आप सारे ही छोटा कल्लू घारा उसकी याद विच सारे जुड़ बैठे हो। आओ इतिहास दी विचार करन तो पहला दसवें पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जदों आपां वेखदे आ अपना सिख इतिहास सिखी शहीदियां नाल भरपूर है। सिखी एवें नहीं मिली, इवें आपां कह लईए बई ए सिखी सोखी नहीं मिले। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे वचन जौ तौ प्रेम खिलण का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। जे तेनों परमात्मा दे नाल गुरु दे नाल जे तेनों प्यार है ना तू प्यार च खेलना चाहुंदा ता फिर अपना सिर हथेली ते रख के आना है। भाव यह है भी मरण तो नहीं डरना क्योंकि शरीर करके ता एक दिन मरना है। कोई अज तक शरीरक तौर ते नहीं रह सकिया पर अपने अणख नू जिंदा रखना है। तेरा अणख ना मरे तेरी आत्मक मौत ना होवे। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। ते पंजवें पातशाह जी ने होर खुलासा कर दिता

प्रभ मेरे तिस आगै क्या कहता। आओ सारी संगत मिल करके गायन करिए जी। साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, अन बोले को तू ही पछाने जो जीयन मैं होता। अंदर दी भावना मेरे दातिया तू ही जानता है, क्योंकि तू दिलां दियां जानन वाला है। असी मुख तो नाम ही बोलीए, तू अंदर दी आवाज सुन लैना। जो मेरे अंदरों आवाज आ रही है मेरे दाता जी, तुसी ओ जानदे हो, तुसी ओ पछाण लैंदे हो मेरे अंदर की चल रहा। रे मन काए कहाल ओ डहकै जो पेखत ही संग सुनता। आओ प्यार ना मिल करके गायन करिए।

आधार है प्रभ शरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। एक टेक गोविंद की, राम जना को राम भरोसा, उस एक दा आसरा, एक दी टेक, एको दी ओट जिन्हां दे मन विच वस जांदी है वो किसे दूसरे दी मुथाजी नहीं करदी। उन्हां दे अंतर आत्मे हमेशा ये पंक्तियां चलदियां ने, जां तू मेरा वस वल है तां क्या मोहसंदा, तुद सब किश मैनू सौंपिया जां तेरा बंदा। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, बट हमारा धड़ा हर रहा समाई। कोई किसे नाल धड़ा बनाउंदा है, कोई किसे नाल कि मेरे धड़े विच ज्यादा पावर है, कोई सोचदा मेरे धड़े विच ज्यादा समर्था है, पर गुरु प्यारियो जान गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै, जान गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै, जिस दे वल गुरु हो जाए ओदा कोई बाल बांका नहीं कर सकता।

रास यो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरी तुमरी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत

लाली पंध जलंधड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु जी टोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख।

नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयो गुरु सारी साध सिंह जीओ, तनता दे योग हो अमृत वेले तो लिया के सुलिता गुरु दरबार दियाँ हाजरियां भर के अमृतमय बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां गुर इतिहास सरवण करके अपने जीवन दियाँ अनमोल कड़ियाँ तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे अंदर बैठ के शिकार्थ कर रहे हो। सतगुरु जी रहमत करन आप समूह संगतां दियाँ हाजरियां दर प्रवान करन, दरों करों अमृत वेले दा जागरना नामदान सिखी सिदक भरोसा दान सरबत नूं सतगुरु जी चढ़दियां कलां दी दात बख्शिश करन। सो इत्थे दीवान दी समाप्ति है, पुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सारे करो जिन्ने बैठे हो, अखां बंद करके प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा। वाह गुरु।

जुड़ के अखा बंद कर मन नू जोड़ना। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी वाहिगुरु नू क्या हर जेठ।